हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उन ग्रुस्कात, साल्सबर्ग। मैं हूं इमरान आलम और आप लोग सुन रहे हैं पाक इंडिया एक्सप्रेस, और हमारे बैकग्राउंड में आतिफ असलम की एक कलाम चल रहा है, वही खुदा है। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि कुछ ही देर में रमज़ान जो है वो शुरू हुआ चाहता है, और मैं चाह रही थी कि अगर कल एक्चुअली अभी मेरा सेंडिंग सुनने के बाद आपने अगर सहरी की तैयारी शुरू करनी है, तो मैं चाहती थी कि आप कुछ अच्छा सीख कर और मैं कुछ अच्छा सुना कर आपको आप रमज़ान का स्टार्ट करें। तो अगर तो आप ये सेंडिंग सुनेंगे और उसके बाद रमज़ान स्टार्ट हो रहा हुआ और आपने सहरी की तैयारी करनी हुई, तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इबादतें करें, अपने दुआएं अल्लाह से मनवाएं, अपने गुनाह बख्शवाएं, और जब आप अपने बारे में दुआ कर रहे हो तो थोड़ी सी दुआ हम सब के लिए भी कीजिए, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। और जैसा कि मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि इस दफ़ा का जो रमज़ान से पहले भी रमज़ान स्पेशल ही होगा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं बहुत देर से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन मुझे समहाउ कभी समझ नहीं आया कि मैं उसको कहाँ फिट करूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि रमज़ान के जो है वो इस दफ़ा हम लोग तीन शोज़ करेंगे, दो शोज़ जो रमज़ान के अंदर होंगे और उसमें से एक शो जो है वो हम लोग रमज़ान के बिल्कुल स्टार्ट में, अल्लाह की तरफ से हम लोगों को ये मौका मिल रहा है तो हम लोग वो एक रमज़ान का जो स्टार्ट वाला शो है वो भी रखेंगे। सो ये हो गया कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके साथ में एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग बहुत ख्याल रखें, वो ये है कि ये जो सेगमेंट है वो किसी के लिए भी तबलीग वाली चीज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी को तबलीग कर सकती हूँ या मैं किसी को कह सकती हूँ कि ये करो वो करो, मुझे नहीं लगता। मैं हर इंसान, मतलब मैं गुनाहगार इंसान हूँ, और मैं किसी को ये नहीं कह रही कि तुम ये करो और ये करो वो करो, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं जस्ट एक आम आदमी हूँ जो क्यूरियस है, बिकॉज हम सारे ह्यूमन बीइंग एज नेचर हम लोगों की ये होती है कि हम सब क्यूरियस होते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं, हम लोग नई नई चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, हम नए अलूम जो हैं वो डिस्कवर करना चाहते हैं। तो इस वजह से मेरी भी उसी चाहत में थोड़ा बहुत जो मैं करती रहती हूँ उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अब आप लोग भी जनरल नॉलेज के लिए सुन सकते हैं, लाजमी नहीं कि मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है ये वाला सेंडिंग सुनने के लिए, लेकिन एक मुझे लगता है कि एक इंसान होने के नाते एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार पता तो चले कि क्या हो रहा है। उन बीजी आलेवस इन दस वी आले नॉइग्रिक जिन मेंशन जिन नॉइग्रिक उन वी मेंशन ये दिन थाग वस नॉयस लैनन उन वेन वी वस निश लैनन खनन फजूखन वी एगन वस नॉयस सुम एन डेक्कन ओद एनफाख दी डेक्के होग सु हेबन उन शाउन वस आफ द आंदन साइते गिप्ट उन हॉयते इन उनजर रमदान स्पेशल रेदन वी उबे दी साखन दी ओद दी इवेंट्स सो सो sagen die im Ramadan passiert sind und wie sie alle wissen und die die nicht wissen, Ramadan ist ein Monat, wo alle Muslime fasten, ja, bis zum Sonnenuntergang fasten wir und wir dürfen kein Wasser, nichts essen, nichts trinken und ja, so ist das. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, wenn Sie mir fragen, ich trainiere seit ich 10 war und meine Kinder auch. Mein Kind, der Jüngste, ist circa 8 und er hat letztes Jahr angefangen zum Fasten. So seit man 7 ist, trainiert man oder übt man, und bis man so wie ich 36 wird, ist man so ein Profi. Ich bis jetzt habe im Winter gefastet, im Sommer habe ich gefastet, in Salzburg war es nicht einfach. Als ich hier neu war in 2013, Ramadan haben wir in August gehabt und das Sonnen Untergang war, oh Gott, es war um 9 oder um 9:30 die Uhr, und
Es war Katastrophe, so man darf nicht bis 8:30 oder bis 9 essen, aber und es war heiß auch und in Pakistan, obwohl es sehr heiß ist, aber wir sind gewohnt, dass man Klimaanlage zu Hause hat, aber da haben wir wirklich nichts gehabt und dann nur mit so like with the fan only, das Leben war nicht so einfach und Ramadan war so auch nicht so einfach, aber ja, so ich werde schauen, dass ich in verschiedenen Sprachen wie immer switche und damit alle, die mir gerade hören, mich verstehen können. Aber on that note, so I think the topic is clear. We're going to talk about the basic things in Ramadan and the events that happened or occurred in Ramadan, month of Ramadan. And with that, I'm going to play all the kalams and not the songs. But I hope you enjoy the kalams because the kalams are not like, you know, random. These are like chuninda kuch kalams hain jo I think ki aapko pasand aayenge aur suniye aur enjoy kijiye. Ye Meher Zain ka hai ya Nabi Salam Alaikum. Okay, here we go.

आप लोग आ गए हैं वापस और हम लोग सुन रहे थे माहर जैन का कलाम, दैट इज या नबी सलाम अलैका। मैंने जो पहले आतिफ असलम का कलाम चलाया था वो हम्द थी, तो आई थॉट इट विल बी बेटर टू लाइक प्ले अनाथ नाउ। एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट रमज़ान एंड द इवेंट दैट अकर्ड इन रमज़ान, आई थिंक क्रॉनिकल ऑर्डर में चलना चाहेंगे तो मुझे इस तरह से चीज़ें याद नहीं आएंगी, बट एक चीज़ जो मैं रमज़ान के बारे में जब भी सोचती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बचपन से ना वो फंस गई हुई है मेरे दिमाग में। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरे अपने फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो मेरे लिए जो डेथ्स हैं उनका मतलब कुछ और तरह से हुआ करता था। मतलब मेरे लिए डेथ जो है वो एक ऐसा इवेंट कभी भी नहीं था जो कि दूर दराज किसी कज़न का होता है और आपका नहीं होता। मतलब मैंने बचपन से ही कन्फ्रंट किया है डेथ को और अपने लव्ड वंस को खो देने को, तो इस वजह से मैंने जब बचपन में पढ़ा कि हुज़ूर सल्लम की जो वाइफ थी द फर्स्ट वन हज़रत खदीजा और उनके साथ में जो उनके चचा थे हज़रत अबू तालिब, उन दोनों की डेथ जो है, मैं सही नहीं हूँ नाम तालिब मुतलिब, मतलब मुझे मैं गलती नहीं करना चाहती, आई एम सो सॉरी, मैं इसको चेक करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं कुछ गलत बोल दूँ। लेकिन हज़रत खदीजा की चीज़ जो है वो हमेशा से मेरे एक दिमाग में रही है बिकॉज़ मुझे लगता था कि अबू तालिब एग्जैक्टली हज़रत अबू तालिब की भी जो डेथ है वो रमज़ान में ही हुई थी। तो मतलब मुझे ना डेथ वाली जो चीज़ है वो हमेशा से ऐसे लगता है कि एक नेचुरल फिनोमेना है, और मुझे पता है कि जब कोई इंसान आपके पास नहीं होता तो उसको उसकी कमी किस तरह से महसूस होती है। मुझे उसके लिए कोई भी चीज़ जो है वो फिल्मों में देख कर खुद आर्टिफिशली महसूस नहीं करनी पड़ती है, मैंने वो एक्सपीरियंस की हुई है लाइक एज़ अ गर्ल हु वॉज़ ओनली 6 ईयर ओल्ड। तो इस वजह से मुझे वो जो एक हज़रत वसल्लम की पेन वाला टाइम था ना, इसमें वो हज़रत खदीजा की डेथ हो गई, हज़रत अबू तालिब की डेथ हो गई, वो मुझे है ना हमेशा वो बहुत पर्सनल सा लगता है बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे पता है, शी वॉज़ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलव्ड वाइफ फॉर 23 ईयर्स। एंड रेवलेशन भी जब उनकी हुई थी तो हज़रत वसल्लम भी जब, तो हज़रत खदीजा जो हैं वो उनके शी वॉज़ देयर फॉर हिम एंड शी वॉज़ द वन हु गेव हिम द कॉन्फिडेंस कि मतलब इफ़ नॉट यू हु एल्स इज़ वर्दी ऑफ द स्टेटस ऑफ बींग कॉल्ड एज प्रॉफिट। तो उस टाइम पर जो एक होता है ना पीछे से सहारा, वो हज़रत खदीजा की तरफ से ही मिला था। और उसके बाद हज़रत खदीजा के ही जो लाइक कज़न थे या फिर मतलब रिलेटिव थे अबू लहब, उनके पास जब गए थे तो मतलब वो एक कंफर्म वाली बात हो गई थी कि जी रेवलेशंस इसी तरह ही होती हैं और जो पुराने पैगंबर नबी गुजरे हैं उन पर भी रेवलेशंस जो हैं वो इसी तरीके से हुआ करती थी। तो हज़रत खदीजा एक तरफ से तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देयर वाज़ अ बिग एज डिफरेंस बिटवीन देम एज़ वेल, शी वॉज़ ओल्डर देन हिम, ही वॉज़ वेरी यंग व्हेन दे गॉट मैरिड, शी वॉज़ अ वर्किंग वुमन, सो So Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to work for her. So she was a widow, not a widow, divorcee. She was a divorcee as well, and still he married her because she was a very big support in his life. And उन्होंने बाद में वो साबित करके दिखाया कि वो औरत जो है अगर आपके पीछे वो एक सपोर्ट हो तो वो ज़िंदगी में कितना सुकून लेकर आती है। एंड शी वॉज़ अमंगस्ट द पीपल जो उन्होंने सबसे पहले इस्लाम जो है वो कबूल किया था। इसी तरह हज़रत अबू तालिब जो हैं वो भी इसी रमज़ान के महीने में हुए थे, ही ऑल्सो पास्ड अवे, एंड इस वजह से उन्होंने उस साल को ईयर ऑफ सोरो के नाम से हज़रत वसल्लम ने उसको डिस्क्राइब किया था। इसी के साथ साथ जब हम लोग क्रॉनिकल, मैंने आपको कहा कि हम क्रॉनिकल ऑर्डर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग डेथ्स की बात कर रहे हैं तो मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं यही सुनती हूँ कि जो जुमे के दिन पैदा होते हैं वो बहुत लकी होते हैं, जो जुमेरात के दिन पैदा होते हैं वो मतलब डेथ होती है वो बहुत लकी होते हैं, इसी तरह जो रमज़ान में जिनकी डेथ होती है वो बहुत लकी होते हैं। तो मतलब अल्लामिया जो है अपने मनपसंद लोगों को के ऊपर

इस तरह के जो हैं वो यू नो नवाजता है अल्लाह मियाँ उन लोगों को. तो जब हम नवाजने की बात कर रहे हैं तो लाइक मुसलमानों में आफ्टर प्रॉफिट्स समबडी हु इज़ लाइक वेरी प्रोमिनेंट इज़ हज़रत अली. मतलब मुझे हमेशा से लगता है कि हज़रत अली जैसा बंदा जो है वो एक होता है ना अनडिफीटेड चैम्पियन टाइप चीज़ जो होती है. ही वॉज समबडी यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स. हज़रत अली वाली जो फीलिंग है वो सिर्फ आप, मुझे लगता है कि हज़रत अली को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनको सिर्फ आप फील कर सकते हो. बिकॉज बचपन से लेकर आज तक आप शिया हो सुन्नी हो, आपका जिस भी मसलक से ताल्लुक़ हो, अगर आपका दिमाग काम करता है तो आप ऑब्वियसली हज़रत अली को as your role model dekhte ho, because Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam used to love him, to obviously to isliye he used to say that jiska main maula hu uska ali bhi maula hai and all that. So ali maula, isliye ali maula naam pada hua hai. मुझे ये चीज़ें जो हैं ये मैं काफ़ी दफ़ा सुन चुकी हूँ, तो इट्स नॉट दैट कि ये बस मैं अपनी तरफ से मोंगियाँ मार रही हूँ. बट व्हेन यू टॉक अबाउट एज आई एक्सप्लेन, हज़रत अली इज़ अ फीलिंग यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. और हमारे जैसे गुनाहगार, मेरे जैसे गुनाहगार, तो ऑब्वियसली मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी उस तरह से. बट ही ऑल्सो पास्ड अवे इन रमादान. सो एक वो चीज़ थी दैट जो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ के पसंदीदा बंदे जो हैं उनको उठाया जाता है रमज़ान में, या जो है वो रमज़ान उनके लिए एक मंथ है जिसके अंदर अल्लाह मियाँ अपने प्यार करने वाले लोगों को, अपने से प्यार करने वाले लोगों को बख्शता है या नवाजता है. इसी के साथ साथ हज़रत आयशा जो है, हज़रत आयशा अबू बकर, हज़रत अबू बकर की बेटी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ है, उनकी हज़रत आयशा की भी जो बरसी है वो रमज़ान में होती है. शी ऑल्सो पास्ड अवे इन रमादान. एंड देन अगैन हज़रत आयशा वॉज़ वन ऑफ़ द पिलर्स ऑफ इस्लाम, बिकॉज आगे जो इस्लाम चला है वो उनसे बहुत सी रवायतें जो हैं वो उनसे मुंसलिक की जाती हैं. लाइक शी वॉज यंग, शी यूज़ टू बी विद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल द टाइम. और नॉट ओनली बिकॉज वो मैरिड थी उनके साथ, इट्स बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उनके साथ उनका टाइम गुजरा है. देन शी वॉज हज़रत अबू बकर की बेटी, तो ऑब्वियसली दैट एड्स मोर वैल्यू एंड मोर वेटेज टू हर स्टेटस. एंड हज़रत आयशा जो हैं वो शी वॉज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वन ऑफ़ द बिलवड वाइफ्स ऑल्सो. और अम्मा आयशा उनको कहकर हम मुखातिब करते हैं. और इसी तरह जब हम हज़रत आयशा की बात कर रहे हैं, हज़रत अली की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आएँगे हज़रत हसन ऑल्सो. हज़रत हसन ऑल्सो पास्ड अवे इन रमादान. इस तरह से बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं रमज़ान में जो कि बहुत सैड कंसिडर होता है. लाइक हज़रत अली का अगर आप वाक़या सुन लें कि जिस तरह उनकी डेथ हुई थी, दैट अ रेंडम गाय जो कि आया और उसने आकर मार दी तलवार, और इस तरह से मतलब बंदे को फील होता है कि यार मतलब क्या. और वो लोग जो मार रहे हैं वो भी मुसलमान थे, और जो मरवा रहे हैं वो भी मुसलमान थे, और जो मर रहा है वो तो फिर अली था. तो मतलब वो मुझे कभी कभार होता है कि आप अपने बदलों में इतने ब्लाइंडेड हो जाते हो कि आपको ऐसे कैसे नज़र नहीं आया कि जिस बंदे पे आप हाथ उठा रहे हो या जिस बंदे पे आप तलवार उठा रहे हो वो हज़रत अली है यार. मतलब इतना कैसे ब्लाइंड हो जाते हैं लोग अपने अपनी अना में और अपने गुस्से में और अपने. लेकिन फिर वही चीज़, अल्लाह मियाँ ने सब फीलिंग्स बनाई है और अल्लाह मियाँ ने इसी तरह से ज़िंदगी आगे चलानी है. तो बहुत ही सीरियस टॉपिक हो गया डेथ्स. बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को इस तरह की कर दी. रमज़ान में इन सब डेथ्स पे ख़त्म भी होते हैं, और लोग जो हैं वो सबीलें लगा, सबील मतलब ऐसे ख़त्म दिलाते हैं, खाना वगैरह देते हैं. ये चीज़ें मैंने पाकिस्तान में रहते हुए फ़र्स्ट हैंड हमेशा से एक्सपीरियंस की हैं. यहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जो है उनको प्रैक्टिस करूँ और मैं आगे लेकर चलूँ. और इस वजह से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं इस तरह हम लोगों के रमज़ान स्पेशल जो पहला शो है उसके अंदर पूरी बेसिक्स जो मुझे इंफॉर्मेशन पता है रमज़ान के बारे में वो आपके साथ कहने. अभी आप अगला कलाम सुने और जब आप वापस आएंगे तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं.

सो आप लोग आ गए हैं वापस और हम लोगों का चल रहा है रमजान स्पेशल, और उसमें हम लोग डिफरेंट तरह के कलाम जो हैं वो चला रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग रमज़ान की जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादा 30 या फिर 29 डेज़ जो है वो एग्जैक्टली रमज़ान के रोज़े होते हैं, और औरतें रोज़े नहीं रखती हैं जब उनको पीरियड्स होते हैं, तो मतलब औरतें आर एग्जेम्प्टेड उतनी देर के लिए। बट उसके बाद जो है जब अगले मंथ्स में बंदे को वो पूरा का पूरा जो है वो कंपनसेट करने होते हैं रोज़े, और ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों की जो हम फॉलो करते हैं, लाइक खाना नहीं खा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन जैसे ही अफ्तार का टाइम होता है खाने पर हम टूट पढ़ते हैं। मैंने अभी इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर सारी दुनिया बैठ के समोसे बना रही है और पट्टियाँ बना रही है, और मुझे नहीं समझ आती, सीरियसली मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, बिकॉज अभी तक आई हैव नॉट डन एनीथिंग। मतलब सीरियसली यू कैन से कि मैं बहुत भोड़ हूँ, बट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसलिए कुछ नहीं किया बिकॉज मतलब मैं खजूर से रोज़ा खोलूँगी और नमाज वगैरह एंड ऑल दैट, और उसके बाद मेरे जब हस्बैंड आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे प्रॉपर तरीके से, मतलब बट मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हम लोग कुछ, या मतलब मैंने ऑब्वियसली घर में दावतें की हुई हैं और अफ्तारियाँ होंगी, तो मैंने वो सारा जो स्पेशल चीज़ें हैं वो मैंने अपनी अफ्तारियों के लिए बचा कर रखा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बैठकर बस अब शुरू ही हो गए हैं और बस अब समोसों पे समोसे और पकोड़ों पे पकोड़े, पट्टी पे पट्टी चल रही है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस देख रही थी और मुझे हो रहा था कि यार मतलब ये क्या हो रहा है भाई, तो मतलब ठीक है अगर आपको लगता है तो होना चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मुझे लगता है कि ठीक है रमज़ान आ रहा है, लेकिन क्या पट्टी पे पट्टी और मतलब या I am not going to talk that much about it because फिर एक वो बात हो जाती है कि मतलब खुद तो करना नहीं और दूसरों को तनकीद करें, बट जो कर रहे हैं उनको थम्स अप, और जो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ खाने पर फोकस करेंगे उनको भी थम्स अप, तो जिसको जो सही लगता है वो कीजिए। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रमज़ान के इवेंट्स की, और रमज़ान में क्या क्या होता है या क्या क्या इवेंट्स जो हैं वो हो चुके हुए हैं रमज़ान में, और उन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। अब अगर आप लोग देखें तो रमज़ान को जो है वो हज़रत वसल्लम के टाइम्स पे एक नॉर्मल मंथ के तौर पर लिया जाता है, मतलब वो जो एक होता है ना दुनिया के सारे काम भी चलते रहेंगे, ये नहीं है कि जंगें बंद हो गई, ये नहीं है कि जी मर नहीं रहे हैं, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, लेकिन इस्लाम मतलब लेकिन उसके साथ साथ जो एक अहमियत है रमज़ान की वो भी साथ साथ चल रही है, तो मतलब ऐसी चीज़ें आपको मतलब ये है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारा कुछ है, लेकिन उसके साथ में ये नहीं है कि आपका रोज़मर्रा वाली दुनिया से आपने एक किनारा कर लिया और बिल्कुल साइड पर होकर बैठ गए, वो वाली चीज़ भी नहीं है, जो कि आई फाइंड इस्लाम ने बड़ी वो मज़े की कि आप ऑल्दो आप वो सारा कुछ कर रहे हो जो कि करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वो मैं बचपन से मेरी अम्मा से सुन रही हूँ दीन और दुनिया दोनों रख रहे हैं, तो हम दीन और दुनिया दोनों लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि साथ साथ हों। जब ये बात मैं अभी इस टाइम पर क्यों कह रही हूँ, द थिंग इज़ दैट इस्लाम में जब आप रमज़ान के बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि रमज़ान में कौन से इवेंट्स जो हैं वो हुए हैं, तो उसमें देर आर सो मैनी बैटल्स जो रमज़ान में हुए हैं, लाइक बदर जो है वो दो आफ्टर हिजरा, जब हिजरत के बाद जब मक्का से मदीना चले गए थे सब, तो मतलब जब दो साल हो गए थे वहाँ पर गए हुए थे, तो बैटल ऑफ बदर हुआ था, और बदर में वो बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, और वो एक कुरैश ऑफ मक्का और जो मतलब मुस्लिम्स जो हैं उनके और कुरैश ऑफ मक्का जो हैं उनके अगेंस्ट जो है वो लड़ाई और भड्डा जो भी था वो हुआ था, और बदर के मुकाम पर हुआ था। बदर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट मुकाम बिकॉज एंड ऑफ टाइम्स में दज्जाल से रिलेटेड भी बदर बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन 17th रमज़ान को जो है वो ये एक वॉर और एक और बैटल जो है वो शुरू हुआ था। इसी तरह कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो है वो भी रमज़ान में ही हुआ था, इट हैपन ऑन 18th को, लेकिन ये आफ्टर 8
تب آفٹر 8 ایئرز آف ہجرا کے بعد ہی ہوا تھا. تو مطلب پہلا بیٹل جو ہوا تھا وہ 2 سال کے بعد ہوا تھا, اور پھر جو مکہ واپس کانکر کرنے کا, یا کانکر کا ورڈ یوز کریں یا آپ کہیں کہ مکہ جو واپس گئے تھے سب, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے تھے اور وہ سارا کچھ, اور وہ یہودی نہیں, یہودی نصارہ والا مدینہ میں ہے, لیکن جب واپس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے اور کسی سے انہوں نے بدلہ نہیں لینا ہے, اور ایک عام معافی کا اعلان ہو گیا تھا. تو وہ والی جو چیز ہے وہ اٹ ہیپنڈ ان رمضان آلسو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دیر واز اے بیٹل جس میں حضرت طارق بن زیاد جو ہیں انہوں نے ایک لڑا تھا, اینڈ دیٹ واز آلسو اگین ان رمضان. اینڈ دین بیٹل آف این جلوت جو ہے دیٹ واز آلسو ان دس منتھ. تو مطلب دیر آر سو مینی تھنگ دیٹ ہیپنڈ ان دا منتھ آف رمضان, اور وہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ ساتھ ساتھ ان کے وہ چلتا رہا ہے کہ یار ایک طرف آپ کی عبادت چل رہی ہے اور سب سے مقدس 10 مہینے, اور دوسری طرف آپ نے وہ جو دنیا داری ہے اور اس میں آپ کی نیڈز ہیں اور اس میں آپ کے ایک وہ ایک آپ کے اوپر کام ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو حفاظت رکھنی ہے اور اپنے لوگوں کو سیف کر کے رکھنا ہے. وہ چیز بھی ایک پراپر طریقے سے رمضان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھی. اسی لیے جب آپ عام روٹین میں جاتے ہیں گھر سے باہر تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے جو کام کرنے ہیں وہ بھی کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اللہ کا عبادت بھی کیجیے, اور جہاں پر تھوڑا سا ٹائم ملے وہاں پر تھوڑا بیٹھ کر تسبیح بندہ کر لیتا ہے. اور نمازیں جو ہیں وہ تو میں تو گاڑی میں بھی پڑھ لیتی ہوتی ہوں. تو مطلب دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ ایک روٹین جو ایک تسلسل ہے نا وہ برقرار رہے. اور جی ہاں یہی کہنا چاہ رہی تھی میں. تو جب آپ واپس آئیں گے تو اس کے بعد رمضان میں ہونے والے ایک بہت سگنیفیکنٹ ایونٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور ابھی یو آر گوئنگ ٹو لسن ٹو حسبی ربی بائی سمیع یوسف. انجوائے کیجیے, اٹس لائیو اینڈ اٹس ویری گڈ.

So we are back, and that was Sami Yusuf, and he just does magic. मतलब मैं आतिफ असलम को हमेशा देखती होती हूँ. जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को obviously the same school, तो इस वजह से हमें होता था कि आतिफ असलम used to do नाते and everything, and he was like this बीबा बच्चा, and then he started you know doing all these songs and all that. और उसके बाद बंदे को लगता था कि यार मतलब obviously उसने songs की तरफ से आना था, because नाते पढ़ के कौन मशहूर होता है. But then you live long enough and you will witness everything, because we lived long enough to see that Sami Yusuf actually only sings isi tarah ke kalam jo hote hain, and he is famous. To Allah Mia jisko famous karna chahe aur jisko izzat dena chahe, to matlab जी हाँ. तो इसी नोट के साथ हम लोगों ने एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी. जब हम रमज़ान में पेश आने वाले इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाउ कैन, तो आई सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, बिकॉज नज़ूल कुरान जो है वो भी रमज़ान के महीने में ही हुआ है. और मतलब वो जो नज़ूल कुरान का जो एक पूरा इवेंट है, वो इन इटसेल्फ इतना ओवरवेलमिंग है दैट आपको समझ नहीं आती है कि मतलब कैसे आप अपनी फीलिंग्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करो. मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था कि दैट अगर मेरे पास अभी कोई आ जाएगा और वो मुझे कहेगा कि वो फरिश्ता है एंड ऑल दैट, तो मतलब मैं तो आई विल बी स्केयर्ड टू डेथ. एंड दिस इज़ द सेम थिंग दैट हैपेंड विद हज़रत सल्लम आल्सो. ही वाज आल्सो वेरी स्केयर्ड. ही वेंट होम, ही टॉक टू हज़रत खदीजा, बट ही हैड अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम. शी देन केम विद हिम एंड शी सेड, मैंने सुना है दैट जो वहियाँ हैं वो रेवलेशंस जो हैं वो इसी तरह होते हैं बाय सम एंजल्स, एंड ऑब्वियसली you are the right person, so who else than you. And then he was like, she was like, okay, let's go there and see. And and jab wahan par hum honge, to us waqt jab wahan par hum honge, to say, like hug me or do something, and then we'll know that वो जिन हैं या वो फरिश्ते हैं, बिकॉज़ फरिश्ते जो हैं वो मासूम होते हैं, और जब वो मियाँ बीवी जो हैं वो इंटीमेट होते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि जिन जो हैं वो वहीं पर रहते हैं और उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो दैट वाज़ द लिटमस टेस्ट फॉर हज़रत खदीजा, एंड ऑब्वियसली हज़रत जिब्राइल वेंट अवे when they hugged and all. उसी टाइम पर हज़रत जिब्राइल ने अपने आप शो करवाया था हज़रत हुज़ूर सल्लम को, एंड ही हैड 600 से ज़्यादा पर, एंड वो पर जो हैं वो नीले और ग्रीन एंड ब्लू थे. और मतलब ये एक और मुकाम पर हुआ था जब हुज़ूर सल्लम जो हैं वो शबे कदर का वाक़या पेश आया था, शबे मेराज का वाक़या पेश आया था. शबे मेराज पर जब वो वहाँ पर ऊपर गए थे हुज़ूर सल्लम अल्लाह मियाँ से मिलने, तो वहाँ पर जो हज़रत जिब्राइल के बैठने की जगह थी वहाँ पर जब उन्होंने देखा था, तो हज़रत जिब्राइल जो है उनके परों में से जो बहुत कीमती पत्थर और मोती जो हैं वो परों में से गिर रहे थे. एंड ही हैड मोर देन 600 पर, एंड ही वाज सो बिग दैट जब हज़रत खदीजा के साथ ओहद के पहाड़ पे ऊपर, ओहद का पहाड़, आई डोंट नो, या ओहद का पहाड़ है, नहीं सीरियसली कभी कभार मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, और फिर मुझे गारे हिरा पे ऊपर, ठीक है, गारे हिरा के ऊपर जब हज़रत सल्लम ने हज़रत जिब्राइल को अपनी फॉर्म में देखा था, तो वो इतने मेजेस्टिक और बड़े थे कि उन्होंने पूरा एक वो जो अर्थ का होराइज़न होता है ना, वो जो एक एक लुक होती है पहाड़ के ऊपर से आपकी अर्थ की, वो पूरा होराइज़न भर गया था, बिकॉज ही वाज सो बिग एंड सो मेजेस्टिक. तो हज़रत जिब्राइल के बारे में हम एक किसी और दिन बात करेंगे, बिकॉज हज़रत जिब्राइल की शानी और है. लेकिन हज़रत सल्लम जब इस तरह कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था, तो हज़रत खदीजा ने जिस तरह उनका साथ दिया, और जो वाक़ियात हैं और जो चीज़ें रिलेटेड हैं उस नज़ूल के वाक़े से, वो इन इटसेल्फ इट इज़ सो मतलब अनरियल, कि आपको लगता है कि यार मतलब आप किसी कोई स्टोरी पढ़ रहे हो. बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस थिंग इज़ दैट वो एक्चुअली सच में हुई हुई है. और जब वो आप चीज़ें जो हैं वो पढ़ते हो सुनते हो, तो आपको लगता है कि यार मतलब किस गर्दों का है तू, एक टूटा हुआ तारा ना, तो वही. सो इस तरह की एक सेकेंड,
ने साथ साथ कुछ और भी काम करी. ओके तो इस तरह की बहुत सी. अच्छा मैं आप लोगों को एक बंदे का नाम बताना चाह रही थी, फुरकान कुरैशी व्लॉग्स नाम है उसका, मैं वही ढूंढ रही थी. इसके अंदर जो है वो That guy actually does Islam के बारे में जितने भी interesting और बहुत आपके thought provoking किस्म की events है ना, और जो जैसे जैसे अल्लाह मियाँ ने कुरान में कहा है कि अकल वालों के लिए निशानियाँ ना, तो he is among those people जो निशानियाँ जो है वो इकट्ठी कर रहा है, और वो आदमी हम लोगों के लिए vlogs बनाता है और वो हम लोगों को बताने की कोशिश करता है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ हो सकता है या क्या क्या reasons हो सकते हैं इन चीज़ इन सब चीज़ों के पीछे. तो अगर आप लोगों को कुरान मतलब रमज़ान में आपके पास टाइम है तो ये पॉडकास्ट सुनिए. मैं तो रमज़ान के बगैर भी सुनती हूँ, मैं तो हर वक्त ये पॉडकास्ट सुनती हूँ जब भी मैं काम पे जा रही होती हूँ, काम से वापस आ रही होती हूँ. तो रेवलेशन ऑफ कुरान जो है उसका एक जो बिगिन है वो रमज़ान में हुआ था, और ये पूरा वाक़या जो है मैं फुरकान कुरैशी व्लॉग्स में सुन रही थी. एंड इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों को मस्ट सुननी चाहिए. अब होता यह है कि हम लोग सब कुरान पढ़ते हैं और शब कदर आती है, मतलब ऑब्वियसली शब कदर इज़ अ वेरी वेरी एक तोहफ़ा है अल्लाह मियाँ की तरफ से हम सब लोगों के लिए, तो जो कि ताक रातों में हम लोगों को ढूंढने के लिए कहा गया है, और वो भी रमज़ान में ही है, ऑब्वियसली द गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह मियाँ. नाउ होता ये है कि सिदरतुल मुंतहा पे जो एक दरख्त है जिसके ऊपर कहते हैं कि उसके ऊपर सबके फेथ लिखे हुए हैं, उसी दरख्त के दरमियान में हज़रत जिब्राइल रहते हैं, वो उनकी रेस्टिंग प्लेस है, और उन्हीं ब्रांचेस पर एक ब्रांच पे बहुत मतलब ना गिनती किए जाने वाले फरिश्ते बैठे हुए हैं, जो कि मे बी हमारे आमाल लिख रहे होंगे, उस चीज़ के बारे में मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो सब फरिश्ते जो हैं वो हज़रत जिब्राइल के साथ जो है वो शबे कदर वाली रात पे नीचे आते हैं अर्थ पे, और वो आकर देखते हैं कि कौन सा आदमी है जो हम लोगों को हम लोगों अल्लाह से कुछ मांग रहा है और हम आमीन कह दें, कौन सा आदमी है जो इस रात पे खड़ा हुआ है और वो कुछ करे और हम उस पर आमीन कह दें. तो ये जो रातें हैं, ये ताक रात वाला जो एक वो जो शबे कदर वाला एक गिफ्ट है, वो भी ऑब्वियसली रमज़ान में ही हम लोगों को मिला हुआ है. एंड शबे कदर की सबसे बड़ी एक निशानी जो है वो कही जाती है कि अगले दिन जो सूरज होता है वो बहुत डल होता है. वो सूरज डल होने की जो एक्सप्लेन नेशन है वो यही है कि इतने ज़्यादा फरिश्ते आसमान से उतरते हैं दैट सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती है, और हज़रत जिब्राइल अपनी फुल ग्लोरी में नीचे उतरते हैं अपने फरिश्तों के साथ, और वो ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो अल्लाह मियाँ जो है उनसे माफ़ी मांग रहा है या उनसे कुछ दुआ मांग रहा है या अल्लाह मियाँ को सजदा कर रहा है और ये वो. और फिर अल्लाह मियाँ का अपना निज़ाम है अपने पसंदीदा लोगों को नवाजने का. तो ये सारा अभी बेसिक था रमज़ान के बारे में, ठीक है. इसके साथ में मैं जो आपको कह रही हूँ कि फुरकान कुरैशी व्लॉग्स उसमें जितनी भी चीज़ें मैंने अब तक सीखी हैं मैं वो सब आपके साथ बहुत अरसे से शेयर करना चाह रही थी. एक नॉर्मल एक मैं थोड़ा सा ना तरतीब के हिसाब से आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, और अगले जो दो शोज़ हैं हमारे हम उनमें उस से रिलेटेड बातें करेंगे. और रमज़ान का शो हम इस दफ़ा इस तरह बनाएंगे कि आप लोगों को बहुत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो मिले. एंड आई होप कि आज का जो शो है वो बहुत इस तरह का ना हो कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रही हूँ और ये क्या औरत है, ये प्रिपेयर करके क्यों नहीं आती है. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत कोई लर्नड बंदी नहीं हूँ, ठीक है. मैं एक गुनाहगार औरत हूँ. अगर इसके बावजूद आप लोगों को कोई चीज़ बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप लोग मुझे सजेशंस भेज सकते हैं, और उसका तरीका बहुत आसान है जो कि आपको पता है. रेडियो फैब्रिक की वेबसाइट पर जाइए और प्रोग्राम्स में पाक इंडिया एक्सप्रेस को ढूँढिए, वहाँ पर मेरी तस्वीर के साथ नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप फीडबैक देख सकते हैं.

0: जिसकी बिगड़ी आए नबी
1: तुम अंदर जाओ मैं आता
2: हूं। सो अभी इसी चीज़ के साथ हम लोग जो है अपना शो वाइंड अप करेंगे और आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह मियाँ से अपनी दुआएं मनवाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम सल्ज़बर्ग।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामत के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।